0: Have you got dragons under your bed? Well, I have. It's Kath B here. Why not grab your tickets from my website, kathb.nz, and come on down on the 7th of July at 10:30 a.m. to dance and sing and have fun with me. We're putting on a concert. It's a part fundraiser for Fresh FM, and Flossie will be there too. So bring your change for a balloon and a raffle, and I'll see you there. Grab your tickets from my website, kathb.nz.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।